0: जतन करे तो भी सुरभंग
1: कहे पिंगल पर्वत पर भवन
0: नहीं हो तूफान उस गवन
1: करतार करना मैं दीन बेनती करै
0: नानक तुमरी कृपा धरै
1: संग सहाई सो आवे न चीत
0: जो बैराई दास प्रीत
1: गुरुआ के गृह पीतर बसा
0: आनंद गेल माया रंग रसै
1: दृढ़ कर मन है परतीत।

0: वास्तपदी
1: यह प्रसाद शक्ति ही अमृत का है।
0: एताग्र गोरख मन माहे
1: यह प्रसाद सुगंधत तन लाव है।
0: इसको सिमरत परम गत भाव है।
1: यह प्रसाद बसे सुख मंदर
0: इसे ध्याय सदा मन अंदर।
1: यह प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ बहर सिमरो तिस रसना।
1: यह प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ध्याय ध्यावन जोग।
1: यह प्रसाद पाठ पटंबर हटाव है।
0: इसे त्याग गद वर्ण भाव है।
1: यह प्रसाद सुख सेज सोई जाए।
0: मन आर बैर दंग जस गावी जाए।
1: यह प्रसाद तुझ सब को माना है।
0: मुख दंग को जस रसन बखाने।
1: यह प्रसाद तेरो रहता धर्म।
0: मन सदा ध्याय केवल बार ब्रह्म।
1: प्रभ जी जब तू दर मान पाव है।
0: नानक पद से ती कर जाव है।
1: यह प्रसाद आरोग कंचन देही।
0: निवलाह बुद्ध राम स्नेही।
1: यह प्रसाद तेरा ओला रहत।
0: मन सुख भाव है हर हर जस कहत।
1: यह प्रसाद तेरे सगल छिदर टाक।
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताक।
1: यह प्रसाद तुझको ना पहुँचे।
0: मन सास सास सिमरो प्रभु चे।
1: यह प्रसाद पाई दुर्लभ दे।
0: नानक ताकी भगत करे।
1: यह प्रसाद भूखन पहरी जे।
0: मन तिस सिमरत क्यों आस की जय।
1: यह प्रसाद असब हस्त असवारी।
0: मन तिस प्रभु को कहू नाम बिसारी।
1: यह प्रसाद बाग मिलक तना।
0: राख पुरोय पव अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई।
0: उठत बैठत सद तिसे ध्याई।
1: तिसे ध्याय जो एक अलख है।
0: इहा उहा नानक तेरी रखे।
1: यह प्रसाद करह पुन बहुदान।
0: मन आठ पहर कर दिस का ध्यान।
1: यह प्रसाद तू आचार व्यवहारी।
0: तिस प्रभु को सास सास चिदारी।
1: यह प्रसाद रसुंदर रूप।
0: तो प्रभु सिमर हो सदा नूप।
1: यह प्रसाद तेरी नीकी जात।
0: तो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: यह प्रसाद तेरी पत रह।
0: गुर प्रसाद नानक जस कह।
1: यह प्रसाद सुने कान नाद।
0: यह प्रसाद पेखे बसमाद।
1: यह प्रसाद भूल है अमृत रसना।
0: यह प्रसाद सुख सहज बसना।
1: यह प्रसाद हस्त कर चल है।
0: यह प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: यह प्रसाद परम गत पाव है।
0: यह प्रसाद सुख सहज समाव है।
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लग हो।
0: गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो।
1: यह प्रसाद तुम प्रकट संसार।
0: प्रभु को मूल न मन हूँ बिसार।
1: यह प्रसाद तेरा प्रताप।
0: हे मन मूढ़ दंगो जाप।
1: यह प्रसाद तेरे कार्य पूरे।
0: से जान मन सदा हजूरे।
1: यह प्रसाद तुम पावे साच।
0: रे मन मेरे तू दास हो राज।
1: यह प्रसाद सब की गत होए।
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ।
0: आप गावाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास।
0: प्रभु दया ते कमल बगास।
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए।
0: प्रभु दया ते माधु तुम होए।
1: सर्व निधान प्रभु तेरी माया।
0: आप हो कछु न किन्हु लया।
1: जित जित लाभ हो।

0: अष्टपदी
1: साधक संग मुख उजल होत
0: साध संग मल सगली खोत
1: साधक संग मिटे अभिमान
0: साधक संग प्रगटे सुज्ञान
1: साधक संग बुझे परम नेरा
0: साध संग सब होत नवेरा
1: साधक संग पाए नाम रतन
0: साधक संग एक ऊपर जतन
1: साधक महिमा बरने कौन परानी
0: नानक साधक शोभा ब्रह्म है समानी
1: साधक संग अगोचर मिला
0: साधक संग सदा प्रफुल्ल है
1: साधक संग आवह बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साधु संग होए सब की रेन
0: साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कतु तावा
0: साधु संग स्थित मन पावे
1: साधक संग माया ते पैन
0: साधु संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साधु संग दुश्मन समेत
0: साधु के संग महा पुनीत
1: साधु संग किस क्यों नहीं बैर
0: साधु के संग नंबिगा बैर।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमलालेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्व को सोख,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल भवान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर्ज एक
1: जो बसदा को खोदे को चंदन लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाओ
1: नानक जो भावक का सह स्वभाव,
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे धारू भरे आकाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै
1: नानक जिन प्रभु आप करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्त,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास,
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी बरबकार महा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सुफला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार,
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग।

0: गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: दो नरक पाती हो बुद्ध सुवान
1: जो जाने में जोवन पंत
0: दो हो बुद्ध बेष्टा का जंत
1: आपस को कर्म पंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन ब्रह्मा वै।

0: करहे विचार।
1: तिदन भंत गनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी।
1: सदा सदा जन हुंदे सुखी,
0: एको एक एक पछाना।
1: एत उद कियो सो जी जाने,
0: नाम संग जिसका मन मानिया।
1: नानक तिन्हें निरंजन जानिया।
0: गुर प्रसाद आपन आप सुजे,
1: इसकी जान नहुं तृष्णा बुझे।
0: साध संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग ते ओ हर जन रहत।
0: अंधन कीर्तन केवल बख्यान,
1: गृहस्थ मह सोई निर्वाण।
0: एक ऊपर जिस जन की आसा,
1: इसकी कटिए जम की भाषा।
0: और ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक ते सह न लागे दुख।
0: जिसको हर ब्राह्मण चित आवै,
1: तो संत सहेला नहीं डुलावै।
0: प्रभु अपना कृपा करे,
1: तो सेवक को कहते डरे।
0: ऐसा साथ ऐसा दृष्टाया,
1: अपने कार्य में आप समाया।
0: सोधत सोधत सोधत सीजिया,
1: गुर प्रसाद दात सब बुझिया।
0: जब देखो तब सब कुछ मूल,
1: नानक सो सूखम सोई अस्थूल।
0: मैं कह जान मैं न कुछ मारे,
1: अपन जलते आप ही करे।
0: आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट,
1: आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ।
0: आपे आप सकल मैं आप,
1: अनक जुगत रज थाप थाप।
0: अविनाशी नाहीं कुछ खंड,
1: धारण धारे हो ब्रह्मांड।
0: लख अभेव पुरख प्रताप,
1: आप जपाए तन नानक जाप।
0: जिन प्रभ जाता सो सो भावंत,
1: सगल संसार उतरे तन मंत।
0: प्रभ के सेवक सगल उदारन,
1: प्रभ के सेवक दुख बसारन।
0: आपे मेल लाए कृपाल,
1: गुरु का शब्द जप पै निहाल।
0: उनकी सेवा सोई लागै,
1: जिसनु कृपा कर रहे बड़ भागै।
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान।
0: जो

0: प्राप्त हो जाने।
1: प्रभ अपने का हुकुम बिरजाने,
0: जिसकी महिमा कौन बखानो,
1: जिसका गुण कह एक न जानो।
0: आठ पहर प्रभ से हजूरे,
1: ओह नानक से ही जन पूरे।
0: मन मेरे तन की ओट ले,
1: मन तन अपना तिन जन दे।
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता,
1: दो जन सर्व दो का दाता,
0: जिसकी सर्व सुख।

0: हर हरेक
1: अंधकार
0: नरक
1: दीपक परगासे,
0: भरम मोह दुख दैते नासे,
1: तप्त माहे ठाठ बरताई,
0: आनंद भया दुख नाठे भाई।
1: जन मन के मिटे अंदेसे,
0: साधु के पूर्ण उपदेसै
1: पौचु का निर पौहे बसे,
0: सगल ब्याध मन ते खन से,
1: जिसका साथन कृपा
0: साध
1: तारी,
0: संग जप मा मुरारी।
1: थित पाई चूके भ्रम
0: सुन
1: गवन,
0: नानक हर हर जस सरवनाम,
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही,
0: अगला धार जिन सगली मोही,
1: अपने चरित प्रभु आप बनाए,
0: अपनी कीमत आपे पाए,
1: हरगन दूजा नाही कोए,
0: सर्व निरंतर एको सोए,
1: पोत पोत रवि आरूप रंग,
0: भय प्रकाश साध कै संग
1: रच रच ना अपनी।

0: आप कथय आप सुनने हार
1: आपे गया विस्तार
0: जात भावे तथेष्ट उपाय
1: अपने बाणे लय समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं कछ होए
1: आपन सूत सब जगत बरोए
0: जागो प्रभु जियो आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन्म पाए
0: समदर्शी तत का बेता
1: नानक सगल सृष्ट का जेता
0: जी जंत्र सब ता के हाथ
1: दीन दयाल नाथ गो नाथ
0: जिस राखे तिस कोए न मार
1: दो मुआ जिस मनहु बसारे
0: तिस ताज अवर कहा को जाए
1: सब जरे निरंजन राय।

0: गुर का सुन उपदेस
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: साथ साथ सिमरो गोविंद
1: मन अंदर की उदरे जिंद
0: आस अनित त्याग हुत रंग
1: संत जना की धूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: साधु संग गुण सागर धरो
0: हर तन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साधु संग भज परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित बहो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का हे उधार
0: उत्तम सलोक साधु के

0: की सेव,
1: काल जंजाल विकार ते रहते,
0: राम नाम सुन रसना कहते,
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी,
0: नानक निभि के बमारी,
1: प्रभ की उस्तत करो संत मीत,
0: सावधान एकाग्र चीत,
1: सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम,
0: जिस मन बसे सोत निदान,
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए,
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए,
1: सब ते ऊच पाए स्थान,
0: बोर न होवे आवन जान,
1: हर धन खाट चले जन सोए,
0: नानक जिसे

नमः श्री वाहे गुरु साहिब जी। नमः सोदर राग आसा महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेको असंखा किते तेरे वावने हारी किते तेरे राग परि स्यों कहीं है किते तेरे गावने हारी गावन तुदनों पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरी गावन तुदनों चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनों ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारी गावन तुदनों इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावन तुदनों सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनों साध विचारी गावन तुदनों जति सती संतोखी गावन तुदनों वीर करारी गावन तुदनों पंडित पढ़नरखी सुर जुग जुग वेदा नाली गावन तुदनों मोहनिया मन मोहन सुरग मछ प्याले गावन तुदनों रतनों पाई तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुदनों जोद महाबल सूरा गावन तुदनों खाणी चारी गावन तुदनों खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तहारे सही तुदनों गावन जो तुद पहावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनों गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारी सोई सोई सदा सच साहिब सचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोई केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे रहे समाई

ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान।

0: मन अपना है सब ते नीचा। धन श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सचे पातशाह कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी है जिहड़ा आत्मक अवस्था है जिहड़ी उहदी सब तों उची है महान उची है। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सचे पातशाह कहिंदे जे निम्रता की गल करिए ते निम्रता करके मन करके भी वह सब तों नीवे ने। सिखां दा मन नीवा मत उची अज सिखां दी मत है जिहड़ी वह नीवी होगी ते मन विच हंकार भर गया है। हंकार दीआं ही लड़ाइयां हो रहीआं पग्गां लथ रहीआं गुरद्वारिआं विच आप ही पग्गां ला के आपे वीडियो बना के आपे ही वायरल करदे ने ते आपे ही कमेंट कर रहे ने। यह है सिखां दी अजोकी अजोके सिखां दी हालत तुसीं वेख सकदे हो। एक बन्ने दस्तारां दा कैंप लगदा हुंदा ते दरबार दे विच दस्तारां लाइयां जा रहीआं हुंदीआं ते खालसे की चढ़ती कला हो रही है। गुरु कृपा करी पर ब्रह्म ज्ञानी कौन है? धन श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सचे पातशाह कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर माण हंकार हुंदा ही कोई नहीं। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा अरदास विच कहने सिखां दा मन नीवा मत उची अरदास विच कहने आ पर गुरु तो नालों नाल मंगीए भी मारे कृपा कर रहे ने। मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सचे पातशाह कहते ओही मनुख ब्रह्म ज्ञानी बनते ने जिन्हां दे उपर वाहिगुरु आप अपनी कृपा बख्शिश तरस दया कर दे। गुरु कृपा करे। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सचे पातशाह जी दे पावन शहीदी दिहाड़े अते तीसरे घल्लूकारे नूं समर्पित सो संगतां दे वल्लों सुखमणी साहब जी दे पाठ आरंभ होए हन। गुरु कृपा करे जिन्हां सज्जनां ने जिन्हां संगतां ने प्रेमियां ने गुरु की बाणी दे जाप कीते सतगुरु जी तिन्हां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन जी बुलाओ। फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ताप पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरि के रामन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सा विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाचे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनिया वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान किता गुर विटोहो जिस दियां वडियाईया कह नानक सुनो संतोष वतरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तर सुभाग्य घर सुभाग्य शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को सिनाम हर कह लागे कह नानक तैस कुहा तित करण हदवाजे अनंद सुनो वडभागी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सकल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी।

श्री वाहे गुरु साहिब जी। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, उर्जा पुर्जा कट मरै कबहूं ना छाड़े खेत। मरण मुनसा सूर्या हक है,

प्रभु मेरे देह नाम कर अपने चेरे गगन दमामा बजेओ परेओ निशान कहो खेत जो मांडेओ सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरे दिन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छड़े खेत सुकहो टल गुर से बिया एहन सुसहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए टूडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज रहस मन उपजयो सगले दुख पलायण रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज रहस मन उपजयो सगले दुख पलायण रहाओ जो मांग है सोई सोई पावै सेव हर के चरण रसायण जन्म मरण दोहूं ते छूटै भवजर जगत तरायण खोजत खोज तत विचार्यो दास गोविंद परायण अवनासी खेम चाहै जे नानक सदा सिमर नारायण खोजत खोज तत विचार्यो दास गोविंद परायण अवनासी खेम चाहै जे नानक सदा सिमर नारायण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज रहस मन उपजेओ सगले दुख पलायण।

0: पाठु संग जोग मन रह उदासु संग पद गुण ज्ञान विचारु संग सती संग दातार असंख सूर मोह पक्षार संख मोह लब लाए तार कुदरत कवन कहां विचार वारण जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलाम निरंकार संख मूर्ख अंधक होर संख चोर हराम खोर संख अमर कर जाहे जोर संख गलवड़ हत्या कमाहे संख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे संख मलेश मल पखाहे संख निंदक सिर करै पार नानक नीच कह विचार वारण जावा एक बार
1: जो मत है

ना सत्रह ना मित्रह ना परमंग ना पितरह ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र पर पवित्र पृथिश दिशा दृश्य गृहश भगवती छंद प्रसा काते के अच देश के अभज भेस के अगंज कर्म के अपन परमय।

या पिजलो कह के अद सो कह के भूत वरण है के विभूत करण है के राजन प्रभा है के तरभंग तो जा है के शोक वरण है के सर्वा परण है के जगतं कृति है के शतरंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपोह नूप है के आदा देव है के अपपेव है के चतरंग भीन है के कधीन है के रोज रिजा कर ही मरिया कह के पाक बेअब है के घैबर गैब है के अफुल गुनाह है के शान शाह है के कारण कुनिंद है के रोज निहंद है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र मान्य है सदा एवं प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परम पहिम है के अकल अलाम है के सहब कलाम है के उसन बजू है तमाम रजू है मैं सो सला।

परबा हैं, सदा एवं सदा हैं, बेपोक्त रूप हैं, प्रजक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, बेपोक्त परबा हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, प्रजक्त अनूप हैं, जाति छंद भंग है, नंग है, पेक है, लेख है, परम है, कर्म है, नाद जुगाद हैं, अजय है, वह है, पूत है, धूत है, नास है, उदास है, तंद है, बंद है, भक्त है, वृक्त है, नास है, प्रकाश है, निश्चिंत है, सुनिता लिखा दिखा लिखा पेक है, डा है, गा है, संभ है, गंभ है, अनिल है, नाद है, नित्य है, सुनित है, जात है, जात है, चरपण शंत प्रसाद, सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वमुक्ता सब शंत प्रसाद नरकनाशे सदांग प्रकाशे अनंगं सरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते गा

तिथ के तरन है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पारे हैं, सर्वंग कार्य हैं, सर्वपास हैं, सर्वनाश्य करना कर हैं, विश्वंभर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदेश्वर ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते परे करना कर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते परे।

शांदम। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकार हे, नमो ते तेज, नमो बृंद बृंद, नमो बीज बीज, नमो राज संग ताम संग शांत रूप, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूप, नमो योग योग, नमो ज्ञान ज्ञान, मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्यान, नमो ज्योति ज्योति, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो भोज भोज, नमो पान पान, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूप, नमो इंद्र इंद्र हे नाद, नमो भूते अलंकार रूप, अलंकार अलंकार, नमो आश्वास, नमो बांक बंके, अभंगी स्वरूप नंगी नामे, त्रिभंगी त्रिकाले नंगे कामे, एक श्री शांत जह लै पै बै पूजू नास कस गंज पंज लख भख, अकाल दयाल लेख भिख नाम काम गह डह नाथे, परमाते अजोने मोनी नराग नरंगे, रूपिया रेखे अकर्म परम गंजे लेखे, भुजंग प्या छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्त प्रणासे, अगंजल नामे समस्त निवासे, निरकाम विभूते समस्त स्वरूपे, को कर्म प्रणासी सो धर्म विभूते, सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी, करिम कुनिंदा समस्त निवासी, जय भूते जय गिमे, हरि अंग करी अंग करी मुरी में, जत्र चक्रवर्ती चक्र भोगते, स्वयं भव सुमंग सर्वदा सर्वजुगते तो का।

सहज सुभाए, दर्शन परसियां गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर सोभा। चिंता लाहे हमारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर सोभा। चिंता

कोई पहुंच जाएगा, किसी को अवस्था प्राप्त हो जाएगी। एक अवस्था तो दूसरी अवस्था दे विच जाण दे लई सालां दे साल लग सकते हैं। सालां दे साल आपां उसनू कहन दे विच तां आपां भावें जवान तो लैके दसम द्वार की अवस्था तक आपां कथन कर सकते हाँ, बोल सकते हाँ, विचार कर सकते हाँ, परंतु रसना तो लैकर के जवान तो सिमरन शुरू होके रोम रोम दे विच सिमरन होना दसम द्वार की अवस्था तक, इस वास्ते जे ये पूरी जिंदगी दे विच भी साडा सफर हो जावे ना पूरा साडा